0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर

0: के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रार्थना हमेशा ऐसी करें कि आँख मिले तो लोगों में अच्छाई दिखे, हृदय मिले तो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दे, मन मिले तो बुरी बातों को भुला दे, और आत्मा मिले तो भगवान पर विश्वास कभी न खोए।

भगवान की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं। वे जहाँ ले जा रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, उसे स्वीकार करके चलते रहो, क्योंकि उनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता।

हे भगवान, आपने हमें एक और नई सुबह और एक और नया दिन देखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना से दीजिए इजाज़त आपकी रेडियो दोस्त आंचल को। नमस्कार।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी पर।

सबसे पहले हमारी प्रातःकालीन सभा में सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम खेती में आज का। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे सवेरे 7 बजे और 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत।

समाचार प्रभात सुनेंगे सवेरे 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा 8:15 पर। ये आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का समय रहेगा सवेरे 8:30 का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:10 पर आप पुनः सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर और फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 10 बजे।

शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सवेरे 11 बजे और 11:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे 1:05

पर महिलाएं सुनेगी उनका कार्यक्रम सहेलियां रिबाड़ी। 1:45 का समय रहेगा फिल्म संगीत का, साथ ही होगी विकास चर्चा एक पेड़ माँ के नाम। दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15 पर, किसान भाई सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत। 2:30 पर हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे 3:00 आकाशवाणी दिल्ली से, और 3:05 पर हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन होगा। हमारी संध्याकालीन सभा का आगाज होगा 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:45। ये तीनों कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल, सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण और मैच समाप्ति तक ये प्रसारण चलेगा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

तो ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती में आज, प्रस्तुति पंकज वैष्णव की।
1: राम राम किसान भाई, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाई, अपने कार्यक्रम में टेम वी और मो आयो आपने घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो आज जो अपनी जानकारी देवा खेती बाड़ी रो काम जो अपी करी रहा हाँ, जून को महीनो चली रहो हर आने महीना रहा बीतता दिखाई जो अपने खेती बाड़ी को काम करा। तो वण में आप ही देखो चारा फसला को काम खास तौर पे करना चाहवा। तो वण के बारे में जानकारी देवा तो बात यह है कि पशुपालन अपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पशुपालन जो है लाभदायक यदि वेमदी सीधो संबंध अपने खेती बाड़ी और पशुपालन को पोषण जो है वण के मार्ग में वह सके। डेयरी क्षेत्र में भी कुछ खर्च जो है लगभग 60-70% तक हिस्सों जो है पशु आहार संबंधी व्या करे और यदि किसान भाई जो अपने खेत में पौष्टिक हरों चारों जो है वो उगावे तो केवल अपना दूध उत्पादन ही की नहीं बढ़ोतरी वे बल्कि देखो लागत में भी कमी आवे और पशुओं को स्वास्थ्य भी जो है वो बढ़िया रहे वैसा। तो अब खेतीबाड़ी में देखो अपना चारा फसला है वन की जानकारी देवा कि चारा फसल जो है वन को महत्व कई है। लागत में कमी री बात करा तो देखो बाजार महीने महंगा चारा खरीदवा व निर्भरता कम व्या करे। दूध उत्पादन की बात करा तो हरा चारा जो है अपना विटामिन खनिज और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में वेवे तो दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी वेवे। पशु स्वास्थ्य की बात करा तो हरा चारा जो है मौजूद वन में कैरोटीन जो वहाँ करा है वन में विटामिन ए को स्रोत जो प्रमुख रूपों व्या करे जो अपना पशुओं में प्रजनन क्षमता बढ़ावे रोग लड़वा की जो क्षमता इन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के वहाँ वन में भी सुधार करे। प्रमुख चारा फसला कई कशी कशी है देखो अपना खरीफ के फसल वे जून जुलाई रे महीने जन में देखो ज्वार है मक्का है बाजरा है लोबिया है ग्वार है और नेपियर घास व्या करे और रबी रे महीने में जो वे अक्टूबर नवंबर महीना में वे व बरसीम जई रिजगो और देखो हरूरी खेती जो व्या करे और जायद रे महीने मतलब मार्च अप्रैल रे महीने बाजरो ज्वार और मक्का री खेती व्या करे। तो आप ही देखो

अपन खरीफ री फसल महीना जून जुलाई की टाइम चल रही है, तो अपन ज्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया, ग्वार और नेपियर घास की अपनी खेती करना चाहवा। प्रमुख चारा फसल में खेती में तकनीक की बात करना तो देखो, ज्वार की बात करना सबों पहले, तो देखो इन्हें चार जो चारा फसला जो है वन को राजा क्यों जावे। वन में देखो बुवाई जो है जून का अंतिम सप्ताह महीने या जुलाई के मध्य तक में की जावे। विधि की बात करें तो बीज में कतारों में देखो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी वेणी चावे। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्वार मैंने दूरीन मतलब प्रूसिट एसिड नाम को जो नामक जो तत्व यहाँ करे जो छोटी अवस्था में ही पशुआर मैंने जहरीलो भी वही सके। तो आनी वास्ते कई कटाई अपना समय में पहली जो करा पी फूल आवा की अवस्था महीने में करनी चाहवा अपन है। बरसीम भी बात करना तो देखो कि यह जो है सर्दी के टाइम की जो फसल व्या करे। नेपियर घास जो है वह अपना देखो कि बहुवर्षीय फसल इन्हें कहो जावे। एक बार लगाव के बाद में 3-4 साल तक जो अन्य अपनी चारा के रूप में ले सका। अणि को रोपण करना चाहवा तो देखो जड़ा जो है वन में अपने तना की कलम है वणी के हिसाबों आप लगाई सका। फायदा यो है कि प्रति एकड़ जो अपना अन्य की बात करें तो बीज में कतारों में देखो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी वेणी चावे। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्वार मैंने दूरीन मतलब प्रूसिट एसिड नाम को जो नामक जो तत्व यहाँ करे जो छोटी अवस्था में ही पशुआर मैंने जहरीलो भी वही सके। तो आनी वास्ते कई कटाई अपना समय में पहली जो करा पी फूल आवा की अवस्था महीने में करनी चाहवा अपन है। बरसीम भी बात करना तो देखो कि यह जो है सर्दी के टाइम की जो फसल व्या करे। नेपियर घास जो है वह अपना देखो कि बहुवर्षीय फसल इन्हें कहो जावे। एक बार लगाव के बाद में 3-4 साल तक जो अन्य अपनी चारा के रूप में ले सका। अणि को रोपण करना चाहवा तो देखो जड़ा जो है वन में अपने तना की कलम है वणी के हिसाबों आप लगाई सका। फायदा यो है कि प्रति एकड़ जो अपना अन्य फसला की तुलना रा महीने में अणि में जो बायोमास मतलब हरो चारो जो है वत्तो मिले अपन है। और पोषण प्रबंधन की बात करें तो खाद की बात देखो कि अपना बुआई में पहले अपना 10 से 15 टन अच्छी तरह सड़ी की गोबर री खाद प्रति हेक्टर खेत रा महीने मिलावना चाहवा। नाइट्रोजन की बात करें तो चारा फसला रा महीने बढ़ोतरी वास्ते अपने नाइट्रोजन सबों जरूरी है। और ज्वार और मक्का रा महीने देखो नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार मतलब आधी बुआई पे या पचे आधी जो है अपने पहली सिंचाई के बाद में अपने देना चाहवा। फास्फोरस की बात करें तो देखो जड़ारा महीने विकास के वास्ते DAP को खाद को इस्तेमाल आप करना चाहवा। जल प्रबंधन की बात करें तो चारा फसल में नमी को अभाव उपज विभाग की स्थिति में जो है यानी कि उपज प्रभावित होवे और बरसात के दिनों में देखो जल निकासी की व्यवस्था अपने वेणी जरूरी है। तो गर्मी का मौसम में देखो 7 से 10 दिन का अंतराल में जो है पाना तपी करना चाहवा और वर्कारी टाइम पर अपना जल निकासी को प्रबंधन करना है। तो अन्य तरह आप चारा फसलों को प्रबंधन आप ही कर सका। चारा संरक्षण की बात करें तो पूरा साल में देखो चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना वास्ते संरक्षण जरूरी है। अब देखो साइलेज में व्याकरण में देखो मक्का या ज्वार का जो भी गड्ढा है वन में दबाई जो किण्विक किया जावे और यो देखो हरो चारो उपलब्ध करवा वास्ते नो सबों अच्छो विकल्प व्या करे। हेरी बात करना तो अणमें देखो चारा में सुखाइन जो अपना भंडारण कियो जावे जणो कही है कि बरसीम या रजको है वरना भी सुखाई सका। और पशुपालक भाई जो है वहाँ मैं देखो कि पशुपालक के वास्ते उन्नत सुझाव की बात करा तो देखो मिश्रित खेती आप ही हमेशा कही करा कि अनाज वाली जो चारा फसला है जिनमें ज्वार आप ही वेच सके। उनमें देखो दलहनी फसल है लोबिया या पचे ग्वार अणी का लारा आप ही मिलाइन बुआई कर सका। और चारा महीने प्रोटीन और ऊर्जा को संतुलन बनाए रखता दिखा पे काम कर सका। बीज का चयन की बात करें तो हमेशा प्रमाणित बीज जो है वन को जो उपयोग आपने करना चाहे संकर किस्म का बीज जो है विको प्रयोग आप ही करना चाहवा। विको कही है कि 30 से 40% तक जो है बढ़त अपना अच्छी वेवे। और खरपतवार नियंत्रण का वास्ते कई करना कि शुरुआती 30 दिनार महीने मतलब 1 महीना तक जो है निराई गुड़ाई जो जरूरी व्या करें। खरपतवार चारों जो है वो अपना पोषण गुणवत्ता ने कम करवारो काम करे तो खरपतवार नियंत्रण को काम अपन अवश्य करना है। कीट और रोग प्रबंधन की बात करा तो देखो कि चारा फसल जो है वन में आमतौर पर तना छेद कीट जो है वन को प्रकोप रिया करे। अण का नियंत्रण वास्ते अपन संतुलित उर्वरक देना चाहे फसल चक्र अपनावनो चाहे। रासायनिक छिड़काव की बात करा तो देखो अण में कम अपने 15-20 दिन के ऊपर जो चारों जो है वन में पशुआ ने अपना नहीं खिलावनो है। और अन्यथा कही वे कि पशुआ में जो है जहर फैलवा को खतरो बने करे तो यदि रासायनिक छिड़काव और अपना पशुआ ने चारों खिलावनो अण का बीच में जो है 15-20 दिन को अंतराल जरूर वेणो चावे। अणि बात ने आप सब किसान भाई ध्यान रख जो
भविष्य की राह की बात करना तो देखो अपना वर्तमान की जो टेम है अपने कम जमीन रहा मैंने किसान भाई जो है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ने अपनाते दिखा यो काम कर सके तो वहीं यो अपना वास्ते देखो नई तकनीक एक वरदान के रूप में है। तो अणमे बिना मिट्टी के केवल पानी रहा मैंने नियंत्रित वातावरण 7-8 दिन के महीने भीतर ही देखो मक्का या बचे गेहूँ का बीज ने हरा चारा के रूप में उगाई सका और ये चारों जो है अत्यधिक पौष्टिक और सुपाच्य भी व्यय करे तो अपना डांडा चोपारा वास्ते बहुत ही बढ़िया रह सके। तो पशुपालन में सफलता को मंत्र यो है कि साल भर हरा चारा का नियंत्रण वास्ते अपना उपलब्धता वेणी चाहे और निरंतर यो काम अपने वेणो चाहे एक नियोजित फसल चक्र अपनावता दिखा मिश्रित खेती करता दिखा चारा ने संरक्षित करता दिखा जाप किसान भाई जो है पशुधन जो है वणी की उत्पादकता ने कई गुणा तक बढ़ाई सका। और यदि आप ही जानकारी रखा कि देखो रिपोर्ट जो आपने देवे है तो वणी हिसाब हम देखा कि उदयपुर का कृषि विज्ञान केंद्र है वणी भी आप ही जानकारी ले सका वणी क्षेत्र महीने देखो विशेष दरों जलवायु जो है वणी को भी अपन ध्यान रखना पड़ेगा अनुसंचित चारा प्रजातियां जो है वणी की जानकारी भी अपने लेनी पड़ेगा। और देखो कि वी हिसाब आप ही काम करा तो अपना जो विशिष्ट फसल

0: जो है जिनमें ज्वार या मक्का वन की जो है वैज्ञानिक खेती करना तो अपन चारों जो है अपारे मिना उपलब्ध वे सके। तो ई साबो के ये है कि पशुपालक भाई है बना का वास्ते है बहुत जानकारी उपयोगी है। और आप खेती बाड़ी करा तो पशुपालन भी लारे लारे करा ताकि तालमेल दो हर महीने बैठो दिखो रहे। आपने खेती बाड़ी लारे लारे जो है दूध उत्पादन है वन की भी आमदनी वेती रहे। तो अपने डांडा चौपा भी जैसा भी राखा भली गाय राख मिली है या पचे भैंसा राख मिली है तो वनारा वास्ते का यह है कि चारों को बंदोबस्त अपना करना चाहूँ। और यो जो टेम चाली रो है उनमें देखो वर्खा की टेम आई रही है और गर्मी री टेम जाई रही है तो अन टेम पे जो है चारा को बंदोबस्त अपन करवो जरूरी है। लेकिन ये बात को पूरा ध्यान रखना है कि चारों जो आप लेना चाहिए रहा हाँ जो खेती कर रहे हैं हाँ वो अपना डांडा चौपारा वास्ते जे रीलो नहीं वे और हरों चारों माने उपलब्ध वे वे हरों चारों डांडा चौपाना उपलब्ध वेगा तो वहाँ को पौष्टिकता वहाँ में बनी दिख रहेगा वहाँ में पोषण बने दिखो रहेगा और दूध उत्पादन जो है वो प्रभावित नहीं होगा। आप तो वही हिसाबों के कि चारा फसल जो है वन को प्रबंधन आप ये सभी ध्यान रखन करना चाहवा और उम्मीद करना कि यह जानकारी जो है आपका किसान भाई वास्ते बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित होगा सा। तो या तो वही जानकारी है वे कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है तो चाला सा राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आपने सुना, प्रस्तुतकर्ता थे पंकज वैष्णव, ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं। समय हुआ है सदाबहार नगमों का। सदाबहार नगमों में सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म है कल आज और कल से।

कविता कृष्णमूर्ति और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया का एक खूबसूरत सा गीत, और अगला गीत हमने चुना है फिल्म चित चोर से, आवाज़ें येसुदास की।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथ साथ का एक खूबसूरत सा गीत। और अगला गीत हमने चुना है फिल्म जॉनी मेरा नाम से, आवाज़ है उषा खन्ना और किशोर कुमार की।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी आपके नाम।
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
9: बन गया बजट।
8: हाँ
9: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

सदाबहार नगमों का लुत्फ आप उठा रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

शागिर्द फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को और सदाबहार नगमों का आखिरी पेशकश फिल्म पुकार से आवाज़ें आर डी बर्मन की।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल, और अगली गज़ल है पंकज उदास की आवाज़ में।
1: की एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में

0: तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी

0: अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंकों के साथ अंदर आ ही जाती है।
1: बिल्कुल, और अपनों को याद करने की चाहत हो तो लम्हे अपने आप मिल जाते हैं, और ये पल हमें मिलते हैं हमारे यानी आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रमों के जरिए। तो आज नमस्कार उदयपुर के साथ मैं हूँ मीनाक्षी
0: और मैं आंचल। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार, और आज है कम्युनिटी कनेक्ट मंगलवार।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, कम्युनिटी कनेक्ट मंगलवार में दिन की शुरुआत हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस से। पुण्यतिथि में बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दैनिक खबरों के साथ देंगे फीफा वर्ल्ड कप और महिला T20 वर्ल्ड कप की अपडेट। साथ ही सोशल पल्स में आज हम बात करेंगे बारिश में वीकेंड प्लान्स की।
1: जानकारी सेगमेंट में एस्ट्रॉइड्स के विषय में जानेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के अवसर पर, और मौसम और स्वास्थ्य में मानसून के दौरान खान पान और पहनावा कैसा हो ये बात करेंगे। फिलहाल पहला गीत।

0: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। आज है 30 जून और आज के दिन विशेष की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। यह दिवस दुनिया भर के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और संसदों के महत्व और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
1: अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस वह समय है जब संसदों द्वारा अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है, जिसमें स्व मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होना शामिल है।
0: इस दिन दुनिया भर के देशों में संसदीय कार्य प्रणालियों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यदि लोकतंत्र को फलना फूलना है तो कार्यशील लोकतंत्रों की आधारशिला के रूप में संसदों का मजबूत, पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिनिधिपूर्ण होना आवश्यक है।
1: और इस वर्ष के थीम की बात करें तो 2026 की थीम है मानवाधिकारों को केंद्र में लाना। और आज आंचल पुण्यतिथि है दादा भाई नौरोजी की।
0: बिल्कुल, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। 4 सितंबर 1825 को मुंबई के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी, जिसमें बताया कि अंग्रेज भारत का धन अपने देश ले जाते थे, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था। उन्होंने इस विषय को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से समझाया।
1: एक बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, मेधावी छात्र रहे और उनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को। जिस संस्थान में शिक्षा पाई वहीं उस समय के उच्चतम पद पर पहुंचे, यानी गणित के प्रोफेसर भी बने। समाज सुधार के कार्य किए, कई धार्मिक साहित्यिक संगठनों के प्रतिष्ठाता रहे, पत्र संपादन का कार्य भी किया, वकालत भी की। 1893 यानी 1893 के समय इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा करवाने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और एक आंदोलन भी चलाया जो सफल रहा। और भारतीय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया।
0: ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय बने और इन्होंने वहाँ भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। 30 जून वर्ष 1917 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनका जीवन हमें देशभक्ति, सत्यनिष्ठा और संघर्ष की प्रेरणा देता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत की और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक किया। इनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।
1: और आंचल एक बात जानती हो, भारत की आर्थिक स्थिति, मुद्रा और विनियम नशे के कुपरिणामों से संबंधित उनके जो भाषण हैं वो बड़े आदर और एकाग्रता से सुने जाते थे।

और आंचल अब हम स्थानीय खबरों की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कल क्या खास रहा और आने वाले दिनों में क्या कुछ नई खबर कहती है हमें। तो नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविर में यूडी टैक्स में छूट का 117 लोगों ने लाभ लिया। ये जो अगर शिकायतों की बात करें तो स्ट्रीट लाइट, नामांतरण, सफाई, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जितनी भी शिकायतें थी उनका निस्तारण किया गया और डाइट के तत्वावधान में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मंगलवार से यानी आज से होंगी और जिले के डाइट सहित 9 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 505 छात्राध्यापक इसमें शामिल होंगे। डाइट में 258 महात्मा गांधी विद्यालय गोवर्धन विलास पर 247 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे।

0: इसी के साथ एक खबर ये है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से देश भर में डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। इस तकनीकी बदलाव के कारण 26 जून से ईपीएफओ की महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद है, जिन्हें 1 जुलाई से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही कल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर और सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा का दिव्य महास्नान उत्सव मनाया गया। प्रभु का 108 घड़ों से जल, पंचामृत, औषधियों और ताजे फलों के रस से महाभिषेक किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महास्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और ज्वर लीला में प्रवेश करते। इसके चलते अब भगवान अगले 15 दिन तक एकांतवास में रहकर पूर्ण विश्राम करेंगे। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही प्रभु रथ यात्रा के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
1: और बिल्कुल, और जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है ना, तो पूरे देश में और खासकर उदयपुर में तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। वैसे पूरे 43 दिन के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जो है सोमवार से स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चों की जो चहल पहल है, रौनक स्कूलों में लौट आई है। और कई स्कूल्स में तो तिलक लगाकर, गुड़ धनिया खिलाकर पारंपरिक स्वागत बच्चों का किया गया। छोटे बच्चों में नए स्कूल और नई कक्षा को लेकर उत्साह भी देखा गया। वैसे अगर देखो खेल जगत की तरफ चले तो आंचल, अभी जो कल का मैच रहा ब्राज़ील जापान की, जो मैच की बात करें तो ह्यूस्टन के ग्राउंड पर ब्राज़ील ने शानदार वापसी करते हुए जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। और पहले हाफ तक जापान 1-0 से आगे था, लेकिन दूसरे हाफ में कासेमीरो और ग्रेबियल के गोल्स की बदौलत ब्राज़ील ने आखिरी मिनटों में यादगार जीत दर्ज की। इसके बाद मैच हुआ जर्मनी और पराग्वे के बीच में, तो 1-1 गोल के साथ मैच ड्रॉ हुआ। तो पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 4 बार की पूर्व चैंपियन जर्मनी को पराग्वे ने बाहर कर दिया टूर्नामेंट से। और इस तरह एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला। और अभी जो मैच चल रहा है वो चल रहा है नीदरलैंड्स और मोरक्को के बीच में, ग्वाडालूप इसके ग्राउंड पर चल रहा है और ये राउंड ऑफ के 32 के मुकाबले चल रहे हैं। और अभी तक का जो स्कोर हो चुका है वो 1-1 के गोल से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है और ये 23rd फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के बाद 32 टीम्स नॉकआउट में पहुंची हैं, जिसके राउंड ऑफ 32 के मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं।
0: और जब बात खेल जगत की हो रही है तो बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की। तो आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। यह दोनों टीम के बीच 20वीं भिड़ंत होगी। इससे पहले दोनों के आपसी 19 मैचों में से 17 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो 8वीं बार फाइनल में पहुँचेगा, जबकि विंडीज़ का सिर्फ दूसरा खिताब मुकाबला होगा।
1: और अगर आज के मैच की फीफा की बात करें, ये भी जानकारी दे देते हैं श्रोताओं को, तो आज रात भारतीय समय के अनुसार 10:30 पर कोटे द आइवर, यानी जिसे आमतौर पर आइवरी कोस्ट कहा जाता है, इसके और नॉर्वे के बीच में मैच खेला जाएगा।

0: और आंचल, अब सोशल पल्स की बात करें तो ये आज का हमारा जो विषय है वो है बारिश के वीकेंड प्लान्स। और आप जानते ही हो कि मानसून के मौसम में उदयपुर और उसके आसपास की जो हरी भरी अरावली पहाड़ियां हैं, लबालब भरी झीलें हैं, किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। और यहाँ के स्थानीय निवासी बारिश के दिनों में कई जगहों पर, खासकर जहाँ पानी होता है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। खास जो आप देखोगे यहाँ पे जो सज्जनगढ़ है उसका तो नाम ही मानसून पैलेस है। और बड़ी झील, बाहुबली हिल्स, रायता हिल्स, अलसीगढ़, उबेश्वर महादेव जैसी जगहों पे तो लोग घूमना और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा और थोड़ा आसपास अगर क्षेत्रों में लोग जाना चाहते हैं जहाँ एक दिन में लौट के भी आया जा सकता है, चांदनी विलेज है, नांदेश्वर जी महादेव, बेड़ेश्वर धाम और गोरम घाट फुलवारी की नाल भी इन दिनों बहुत प्रचलित हो रही है। लोग कुंभलगढ़ भी जाते हैं और थोड़ा और पास आ जाते हैं तो बड़ी तालाब, थुरकी पाल, वहाँ भी जाना पसंद करते हैं। साथ में राजसमंद झील, जयसमंद झीलें हैं। तो बहुत से जो ऐसे मौसम खुशनुमा जब हो जाता है तो लगता है परिवार को और दोस्तों के साथ में प्रकृति के निकट जाया जाए और कुछ अच्छा समय बिताया जाए।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया बाहुबली हिल बड़ी लेक के पास स्थित यह हिल है जो बारिश के दिनों में स्थान पूरा ग्रीन हो जाता है। यहाँ से सनराइज और सनसेट का जो शानदार व्यू नज़र आता है, यहाँ से झील और पहाड़ों का नज़ारा भी बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह रायता हिल्स जो उदयपुर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ये पहाड़ियाँ पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ की हरियाली, घाटियाँ और ठंडी हवा बहुत ही मनोहारी लगती है। साथ ही आपने जिक्र किया था उबेश्वर जी का, जो बारिश में बिल्कुल नेचर पैराडाइज बन जाता है। घने जंगल, पहाड़ों के बीच उबेश्वर जी का मंदिर और छोटे छोटे झरने, बहुत ही सुंदर स्थान है। साथ ही इसवाल और केलेश्वर झरना शहर से थोड़ा बाहर है लेकिन मानसून का परफेक्ट पिकनिक प्लेस है।
0: और वैसे आंचल देखा जाए ना तो प्राकृतिक स्थलों की तो कोई कमी नहीं है उदयपुर या पूरे जिले में बात करें, आसपास जितने भी हैं,
1: बस लेकिन फिर भी इनकी देरी है
0: बिल्कुल। लेकिन और फिर भी कभी कभी लोग जो इनके प्राइवेट फार्म हाउसेज होते हैं वहाँ पर भी स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं और इन्हीं दिनों में जाना पसंद करते हैं। कभी तो खाना घर से बनाकर ले जाते हैं, कई जगह पर ये होता है कि सामान लेकर जाते हैं और वहीं पर बनाते हैं, और कुछ जगह ऐसा करते हैं कि हल्का फुल्का स्नैक्स रख लेते हैं और जब बड़ा खाना खाना है तो जो रास्ते में ढाबे वगैरह आते हैं या वह स्टॉल्स वगैरह लगी होती हैं कुछ क्षेत्रों में तो वहाँ पे खाने पीने का आनंद लेते हैं। लेकिन सावधानी भी हमें बहुत रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो घूमने के लिए अगर निकले तो कुछ सावधानियों का ख्याल हमें रखना है। अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहनने, पहाड़ियों पर धीरे चलना है, गीले पत्थरों पर हमें खड़े होने से बचना है और जाने से पहले वेदर भी चेक करना है। अगर बहुत तेज़ बारिश है तो हमें ट्रैकिंग को अवॉइड करना है।
0: और देखिए भले आप कितने अच्छे तैराक हों, है ना, तैराकी नहीं आती तब तो वैसे ही आपको पानी से बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन भले अच्छे तैराक हो लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों का एकदम पता नहीं चलता,
1: बिल्कुल
0: कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो बहुत सावधानी रखें, आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा है ये बात का ध्यान रखें और जीवन बहुत अनमोल है।
1: स्लीपरी रोड पर ओवर स्पीड ना करें और फोग में हेडलाइट्स का ऑन रखें। रेनकोट, अम्ब्रेला, टॉर्च और बेसिक मेडिसिंस और पानी और स्नैक्स अपने साथ लेकर जाएं। साथ ही फ़ोन हमेशा चार्ज करके रखें और अकेले अगर रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो किसी को अपना लोकेशन बता कर जाएं।
0: बिल्कुल, और गीले कपड़े रखने के लिए एक वाटरप्रूफ बैग भी ज़रूर लेके जाएं। तो एंजॉय कीजिए, अगर मानसून जैसे ही आता है वीकेंड के प्लान्स करने शुरू कर दीजिए।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: आगे जारी रहेगा। फिलहाल सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्री गंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे, हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
2: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और

0: फेसबुक एआईआर न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
1: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान हो वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
2: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की पौधे कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूप है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर

0: एक बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में इस गीत के साथ।

0: देखो अंतरिक्ष की दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है ना आंचल, और क्योंकि हमारे से बहुत दूर है तो जहाँ पृथ्वी की तरफ से देखते हैं तो जो दिखता है बहुत बेहद खूबसूरत नजर आता है, और कितने ही गीत, कितनी कविताएं, शायरियां इन पर बनी हुई हैं। लेकिन आज इनकी बात इसलिए की गई है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह क्यों कहा कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, और हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है आम जनता के बीच एस्ट्रॉयड से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया था, और यह तारीख तुगुंसा घटना की याद में चुनी गई। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जो इतिहास की सबसे बड़ी एस्टेरॉयड घटना मानी जाती है। और इस उल्कापिंड विस्फोट के कारण 830 वर्ग मील क्षेत्र में 80 मिलियन वृक्ष जो है वो तबाह हो गए थे, नष्ट हो गए थे। दूरस्थ स्थान होने के कारण विस्फोट में जनहानि भले बहुत कम हुई, लेकिन इसकी लहर सैकड़ों मील दूर तक महसूस की गई। तो आज इसीलिए हम एस्टेरॉयड्स के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे।
1: तो एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह चट्टानी और धात्विक वायुहीन पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मुख्य रूप से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए अवशेष हैं। इन्हें लघु ग्रह यानी माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये किसी ग्रह की तरह गोल नहीं होते, बल्कि इनका आकार बेढंगा आलू या उल्टे सीधे पत्थरों जैसा होता है। इनका आकार कई किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। अधिकांश एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक विशाल पट्टी में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। खगोलविदों के अनुसार सेरेस और सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से भी गुजरते हैं, लगभग 6.6

0: करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण ही डायनासोर विलुप्त हुए थे।
1: बिल्कुल, और संरचना की बात करें तो इसके आधार पर जो एस्टेरॉयड्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सी टाइप होते हैं, कार्बन युक्त कॉमन एस्टेरॉयड हैं, जो माना जाए तो 75% से ज़्यादा जो एस्टेरॉयड्स हैं वो इसी तरह के होते हैं, जो कार्बन और मिट्टी के बने होते हैं। एस टाइप होते हैं सिलिकयुक्त, सिलिकेट निकल और लोहे के बने होते हैं। और एम टाइप धात्विक होते हैं, धात्विक निकल और लोहे के बने होते हैं। इनका जो मास है, द्रव्यमान जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी के चंद्रमा के द्रव्यमान से कम है। तो ये हमने आज अपने श्रोताओं को काफ़ी जानकारी दी, और इसी तरह और भी जानकारियां हम देते रहेंगे अपने आने वाले कार्यक्रमों में। फिलहाल सुनते हैं एक गीत।

0: मीनाक्षी, कार्यक्रम में अब बात करते हैं वेदर और इन्फॉर्मेशन की, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे मानसून के दौरान खान पान और पहनावा। तो हमारे शरीर पर खान पान के अलावा मौसम और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में बताया गया कि आपकी सेहत और मौसम में गहरा संबंध है, इसलिए आयुर्वेद में हर मौसम के हिसाब से रहन सहन और खान पान के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों का पालन करके आप निरोगी रह सकते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार साल में तीन मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और मानसून। ये तीन मौसम छह ऋतुओं में बांटे गए, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत।
1: बिल्कुल आचार्य, ये मौसम जितना मस्ती भरा सुहावना लगता है ना, उतना ही हमारी लापरवाही, अस्वस्थ आदतें इस आनंद को परेशानी में बदल सकती हैं। क्योंकि इस मौसम में ना मच्छर मक्खियाँ काफ़ी बढ़ जाते हैं, संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मौसम में नमी की वजह से वात दोष असंतुलित हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव भी पाचन शक्ति पर पड़ता है। बीच बीच में बारिश न होने से सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, इससे शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है और इन सब

0: कारणों से संक्रमण में जो आप देखोगे कि मलेरिया, जुकाम, दस्त, पेचिश, पेट की बीमारियां जितनी भी हैं, गठिया, जोड़ों में सूजन, उच्च रक्तचाप, फुंसियाँ, दांत खुजली, स्किन की प्रॉब्लम्स यानी हम कहें तो बहुत हो जाती हैं। आई इन्फेक्शंस का खतरा भी ज़्यादा देखने को मिलता है और अनेक रोगों की संभावना इस मौसम में बढ़ जाती है, इसलिए इस मौसम में स्वच्छता का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, वर्षा ऋतु में हल्के सुपाच्य, ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो वात को शांत करती हो। इसलिए पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग खाएं और दालों में मूंग और अरहर की दाल खाना लाभकारी होता है। सब्जियों की बात करें तो इसमें लौकी, भिंडी, तरोई, टमाटर और पुदीना की चटनी आप खा सकते हैं और सब्जियों का सूप पी सकते हैं। फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन और पके देसी आम खाएं। घी और तेल में बने नमकीन पदार्थ भी उपयोगी रहते हैं।
0: बिल्कुल, दही की लस्सी में लौंग, त्रिकुट यानी सौंठ, पीपली और काली मिर्च डालकर आप खा सकते हैं। सेंधा नमक, अजवाइन, काला नमक, ये सब भी आप डाल के अगर दही में खाएं तो ये आराम से पच सकता है और इससे पाचन शक्ति भी ठीक होती है। लहसुन की चटनी, शहद को जल और अन्य जो पदार्थ हैं जो गर्म नहीं होते उनको उनमें मिलाकर हम ले सकते हैं। इस मौसम में पानी को स्वच्छ रखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो ज़्यादातर संक्रमण होते हैं वो दूषित पानी की वजह से ही होते हैं। फूड पॉइजनिंग जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए पानी को अच्छे से उबालकर ठंडा करके पिएं या फिर फिल्टर का उपयोग तो ज़रूर करें।
1: और इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे व रूखे पदार्थ, चना, मोठ, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, आलू, कटहल, सिंघाड़ा, करेला हानिकारक माने जाते हैं। इस समय खट्टे, तले हुए बेसन से बने हुए पदार्थ, तेज मिर्च मसाले वाले बासी खाद्य पदार्थों और पित्त बढ़ाने वाले खाद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। भारी भोजन, बार बार भोजन करना और भूख न होने पर भी भोजन करने से हमें इस मौसम में बचना चाहिए। रात के समय दही और मट्ठा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, और बहुत सारी और भी ध्यान रखने की बातें हैं, जरूर हम बताएंगे। पहले एक गीत।

0: तो दिल तो बहुत कुछ कहता है और दिल आए दिल तो बहुत कुछ चीज़ों पे भी आता है, लेकिन सावधानियां हमें ज़रूर रखनी पड़ती है, ख़ासकर मानसून के मौसम में। तो शरीर की मालिश और सिकाई भी करें, साफ़ सुथरे हल्के कपड़े पहनें। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत अपने कपड़ों को बदल लें। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहाँ अधिक हवा और नमी ना हो। भोजन भूख लगने पर और ठीक समय पर ही करना चाहिए। रात्रि को भोजन जल्दी कर लें तो बहुत अच्छा। मच्छर क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मच्छर आदि से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के आसपास के गड्ढों में जमा हुए और सड़ रहे पानी में मच्छर मक्खियां जो पनप जाते हैं उनसे बहुत रोग फैलते हैं, तो उनमें कीटनाशक छिड़के उनको साफ सफाई रखें, उनमें पानी ना भरने दें, भर गए हैं तो उनका ध्यान रखें। और देखो कई बार छत पे भी हमारे कई चीजें कबाड़ वगैरह रखा होता है, उनमें भी पानी जमा हो जाता है
1: और मच्छर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो उसका ध्यान रखें, यानी कि सफाई का तो हमें विशेष ध्यान देना ही है।
1: बिल्कुल, और इस मौसम में अगर कपड़ों के कलर्स की बात करें तो ब्राइट कलर्स इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही क्विक ड्राई फैब्रिक्स को हमें इस मौसम में चुनना चाहिए और हैवी जीन्स को अवॉइड करना है। साथ ही जैसे आपने बताया, गीले कपड़ों और गीले बिस्तर का उपयोग हमें नहीं करना है। ऐसा करने से बीमारियाँ तुरंत पनप सकती है। शरीर के जोड़ों, विशेषकर थाइस के जोड़ और बॉडी के कवर्ड एरियाज के आसपास की जो चमड़ी है उसको पानी या पसीने से गीला होने से हमें बचाए रखना है। इस मौसम में सड़क पर फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बाइक या कोई और वाहन चलाते समय भी हमें सावधानी रखनी है। साथ ही रबर या वाटरप्रूफ फ्लिप फ्लॉप का भी इस्तेमाल हमें करना है और शरीर में गमोरिया निकलने पर बर्फ का टुकड़ा मलकर लगाना चाहिए या पाउडर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी सावधानियां हम रखें तो मौसम से होने वाली जो रोग है उनसे हम बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। फिलहाल अब कार्यक्रम से अनुमति लेने का समय हो रहा है आंचल, तो एक अंतिम गीत श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम से इजाजत। श्रोताओं, आज मैं थी मीनाक्षी
1: और मैं आंचल,
0: नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ढंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्कंडेय जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है,
2: जी,
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है।

0: दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है, यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले

0: लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए।

0: और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
5: कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
5: कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
7: क्या
5: क्या
7: क्या?
3: पूजा सब तक कोयल गाए, सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम।

0: पानी पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा
1: पानी। इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे, ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँ गाँ गाँ, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी

0: सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना?
1: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
2: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल

0: अरे कछु है भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
0: खाओ, खाओ, खाओ।
2: तुम हंस क्यों रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे। खाओ, खाओ।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: मर गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: अरे

हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली पेशकश फिल्म सूर्यवंशी से, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार के युगल स्वर में अभी आपने सुना बॉर्डर टू फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म मालिक से। आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य, सचिन जिगर, वरुण जैन, श्रेया घोषाल और साथियों की।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

प्रीतम, अरिजीत सिंह, निकिता गांधी, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे वॉर 2 फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। और अगला गीत हमने चुना है ब्रह्मास्त्र फिल्म से, आवाज़ें हैं प्रीतम, श्रेया घोषाल और तुषार जोशी की।

फिल्म बैड न्यूज़ से अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल, अभिजीत श्रीवास्तव और साथियों को। अगला गीत हमने चुना है शेरशाह फिल्म से, आवाज़ है बी प्राक और जसलीन रॉयल की।

कबीर सिंह फिल्म से अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म वांटेड से, आवाजें शान की।

0: फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा से अभी आप सुन रहे थे जावेद बशीर को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म दबंग 3 से, आवाज़ें हैं सलमान अली और मुस्कान की।

सुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे खानदानी शफाखाना का ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म संगीत का आखिरी गीत रागिनी MMS 2 से आवाज़ें मुस्तफ़ा जाहिद की। इसी के साथ दीजिए इजाज़त आंचल को। नमस्कार।

फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियो वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम।

0: में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
0: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया,
5: जाओ भाई।
0: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
0: और ये
2: मेरी गुड़िया के
3: नाम। दादी
1: हाँ
3: आपके नाम।
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने

अभी आप सुन रहे थे एम वेंकटेश कुमार की रचना राग ललित, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं तक। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम।

सुगम संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली रचना आशा भोसले की आवाज में ये गजल प्यारी सी।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की स्वर में ये प्यारी सी गजल अभी हमने सुनी। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगली गजल गुलाम अली के स्वर में। भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की स्वर में ये प्यारी सी गजल अभी हमने सुनी। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगली गजल गुलाम अली के स्वर में।

0: गुलाम अली के स्वर में ये प्यारी सी गजल अभी हमने सुनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से सुगम संगीत कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है अगली गजल, उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल अभी हमने सुनी। सुगम संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं।

संदेश के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाँ, रिश्ते की मांग वक्त होता है। जब वक्त ना दे पाए हम किसी को तो रिश्तों में दूरी आ ही जाती है। हर रिश्ते में प्यार होता है और प्यार में कोई हिस्सेदारी आ जाए तो रिश्तों में दूरी आ ही जाती है। हर रिश्ते में विश्वास होता है, विश्वास अगर डगमगा जाए तो रिश्तों में दूरी आ ही जाती है। हर रिश्ते की अपनी ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतें जब पूरी ना हो पाए तो रिश्तों में दूरी आ ही जाती है ना। और हर रिश्ते में अपनेपन का एहसास होता है और एहसास जब कम पड़ने लग जाए तो रिश्तों में दूरी आ ही जाती है। और ये रिश्ते अपनापन, परिवार, घर सभी हो सकते हैं।

0: नाजिया हुसैन की आवाज़ में कुर्बानी फिल्म का गीत अभी हमने सुना। आइए सुनते हैं अगला गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। कयामत से कयामत फिल्म से उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कयामत से कयामत तक इस फिल्म का ये खूबसूरत तराना अभी हमने सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी हमने सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। और खुशियों का संसार बनता है हम सभी से मिलकर, परिवार से मिलकर, परिवार बनकर।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की स्वरों में आपने सुना मोहरा फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हम आपके ही कौन फिल्म से ये गाना।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में क्रिश फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम चल रहा है और ये है आखिरी नगमा। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। आवाज है आशा भोसले और साथियों की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से थोड़ी ही देर में आप सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
2: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर पाइपलाइन से, 3 पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि

0: संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्राविधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल SOG ने फर्जी FMAG सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। SOG के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से MBBS करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारी सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियों की पारी।

0: राम राम रेखा भैसा, राम राम।
1: राम राम पूजा भैसा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी हुणवा वाली हंगली बेना ने अपनो राम राम सा। देखो भैसा कार्यक्रम में आया हाँ, तो अपने भी हंगली बेना चंदा भैसान, रतन भैसान, लता भैसान सब देखो काम वाम निपटी ने रेडियो सेट रे अड़े भड़े है ने वे वाट नाल रही है कि देखो आज कार्यक्रम में पिटारा रे महीने कई कई जानकारी लाए, तो सब पहला भैसा अपनी बेना ने जो है कई बताओगा।
1: बिल्कुल सा, देखो अपनी बहनों बात चित करा और अपनी बहना ने बतावा कि जो स्वयं सहायता समूह जो अपने बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर रही है सा।
0: घणो बढ़िया जानकारी लाया हो अपनी बहना ने वास्ते कि यो जो स्वयं सहायता समूह है आज के टाइम में अगर आप देखा

0: तो अपनी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था रे बदलवारे महीने एक मुख्य क्रांति रे रूप में बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई रो है सर।
1: बिल्कुल सा पारंपरिक रूप जटे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायता समूह के कारण बहुत कुछ असो बदलाव आयो है। विशेष करने जो ग्रामीण समूह है वटारी जो महिला है वी आर्थिक रूप आत्मनिर्भर भी बन रही है सा।
0: हाँ जी बात की रहो भाई सर। जटे आप देखा कि वित्तीय समावेशन और साहूकारी प्रथा ने मुक्ति भी मिली है। जटे आप देखा कि पहला गांवारे महीने छोटा खर्चा खर्चा व्यवहार या पचे आपातकालीन स्थिति में कई भी देखो अब कई वगत वेती तो मनक जो है दौड़ी भारी ब्याज पे भी स्थानीय जो साहूकार वेता या पचे कणु भी आप देखा सेठ साहूकार वणा हूँ देखो अपने धनराशि ले लेता है पचे वणारे माते वणाने निर्भर रहना पड़तो। असारे महीने देखा कि जो स्वयं सहायता समूह है अणु वणाने साहूकारी प्रथाओं मुक्ति मिली है सा।
1: बिल्कुल सा। और अंडे साथ साथ में जो बचतरी आदत है वह भी अपनी महिला में विकसित हुई ताकि छोटी छोटी बचत करने अपनी अणी आदतों आपी जो आव वालों समय में वणी में आपा किस तरह काम कर सका सा।
0: और वैसा अंडे लारिस अगर आप देखा तो आसान भी कर्ज आपने मिल जावे समूह के भीतर अगर आप रह रहा हाँ तो आपने बहुत कम ब्याज दर पर आंतरिक ऋण मिल जावे। जटे कटे आपने देखो मोटी रकम चाहिए वेवे तो आपने आसानी मिल जावे और देखो आप वर्णे आप आसानी चुके भी सका सा।
1: बिल्कुल वैसा देखो इमें बैंक रो अगर लिंकेज री अपनी बात करा तो आज जितना भी बैंक है वी सब भी अणा समूह की साख ने देखने इन्हें आसानी लोन दे देवे। जन्यू की जो भी ग्रामीण क्षेत्र री महिलाएं हैं वी अगर चाहे तो कोई भी काम चालू कर सके या पचे अणा जो ग्रामीण इलाका में रह वाली बहना है वही अटू लोन लेने भी आपने पूंजी ने और अधिक बढ़ाई भी सके सा।
0: और वैसे अगर आप देखा तो खेती बाड़ी रे आधुनिकरण और आजीविका है वंडो विविधीकरण भी वो है। देखा कि सिर्फ पारंपरिक खेती रे भरोसे रेवाऊ नहीं बल्कि आप देखा कि आज रे टेम रे महीने स्वयं सहायता समूह रे माध्यमों ग्रामीण परिवार जो है कमाई रहा नया नया साधन अपने ही रहा है। जैसे अगर आप बात करा तो देखो आप मूल्य संवर्धन री बात करा सीधा अनाज वेचवारी बजाय अपने जो बेना है वे देखो आप घरे बैठी बैठी अचार वणेरी है पापड़ वणेरी है वड़िया वणेरी है और मसाला वणेरी है पापड़िया वणेरी है जैविक खाद जिस तरह आप देखा कि केंचुआरी खाद गोबर खाद वणी वणा ने पैकेट में करीन देखो वेची रही है जणू कही एक वे अधिक अधिक मुनाफो कमाई रही है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो अंडे साथ में अपनी बेना डेयरी और पशुपालन रो काम भी कर रही है जो कि सामूहिक रूप दूध रो संकलन करनो है पचे वणी दूध संकलन केंद्र ने चलानो है। वैज्ञानिक तरीकों जो भी पशुपालन है विने अपने इने आसानियों आपी अणा काम ने भी बिना अपने कर रही है सा।
0: और देखो बैसा जटे डेयरी और पशुपालन कर रही है वटे कृषि तकनीक रे मैंने भी अपनी बिना भागीदारी निभाई रही है। ग्रामीण जत्री भी बिना है सिर्फ खेती बाड़ी में भागीदारी नहीं निभाई रही है बल्कि जत्री भी सरकारी योजना है जिस तरह की आप देखा कि नमो ड्रोन दीदी योजना वेगी है ये आधुनिक कृषि यंत्र ने ड्रोन रे माध्यमों कीटनाशक छिड़काव जैसी तकनीका रे कार्यरो अंडे महीने प्रशिक्षण में मिले जणू अपनी बेना जो है अणी तकनीकी अपनाई न कार्यरो संचालन भी कर रही है सा।
1: बिल्कुल भैसा देखो आप ही कहवा कि जो स्वयं सहायता समूह अगर मिलने और जत्रा भी FPO यानी कि किसान उत्पादन संगठन मिलने अगर अणी काम ने करेगा तो आप ही कह सका कि सीधो सीधो अंडो जो लाभ वेगा वो अपनी सभी ग्रामीण महिलाएं ने मिलेगा। और जो भी सामान आप ही बनी रहा भले कृषि संबंधित वो चाहे अचार पापड़ मसाला या और भी अन्य कोई सामान वो तो आप ही कह सका कि सीधा आप ही बाजार में अपनी लागत मूल्य रे अनुसार अपना लाभ वणी में मिले ने और आपा आसानियों बाजार में बेच सका सा।
0: हाँ जी बात करो भाई सा। और देखो अन्य आपा स्वयं सहायता समूह की जटे बात कर रहे हाँ तो लागत रे महीने भी कमी आई है बीज वेगियो खाद वेगियो या पचे अपने कृषि संबंधी कच्चो माल वेगियो अंडे महीने सामूहिक रूप थोक रे महीने खरीदवारे कारण लागत रे में भी काफी कमी आई है सा।
1: बिल्कुल वैसा देखो या तो अपने बहनों आपी बात की दी भाई जो स्वयं सहायता समूह है अने वो अपने ग्रामीण स्तरीय अर्थव्यवस्था में कई कई बदलाव भी हो ऐसा। और अब यह कार्यक्रम में जानना बात तो और करांगा लेकिन आपको तो एक राजस्थान गीत होने ही था सा।
0: हाँ सा।

0: तो भैसा कतरू बढ़िया गीत सुनायो अपनी बेना ने कि बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे और लारे लारे संदेश भी हुनवाया सा। और अबे जानकारी ने आगे बढ़ावा और बतावा कि देखो सा ई मार्केट वो अपनी महिला उद्यमिता है वनारे कसा नवा नवा अवसर मिले है सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा आज रो टेम अगर आप ही देखा तो अणी टेम में जो डिजिटल क्रांति और ई मार्केट महिला ने केवल हाट संभालवा या बच्चे छोटा स्तर पर काम करवा वाली जितनी भी कामगार महिला हैं

0: तो रेखा भैसा कतरो बढ़िया गीत हुणायो बहना ने। और अबे देखो जानकारी री कड़ी ने आगे बढ़ावा और बहना ने जानकारी करावा कि महिला जितने भी किसान बहना है वणारो अर्थव्यवस्था रे महीने अप्रत्यक्ष योगदान है वंडी जानकारी करावा सा।
1: बिल्कुल सा। देखो सा पूजा भैसा, आपा सब जाना कि जो भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वगर वणारे अगर असली रीढ़ की हड्डी री बात करा तो अपनी महिला किसान ही है। और एक पुरुष किसान ने काम में बाजार में फसल बेचवा वे और वणियों व्यय वाली जत्री भी नकद आयु अगर आप ही नाप्यो जावा, जबकि जो महिला किसान है वणारो जो योगदान है वो खेत री तैयारियों लेने रसोई घर और पशुहारी देखभाल तक भी फैलियो तक वैसा।
0: और जटे आप महिला किसान बहना की बात कर रहे हैं वैसा, तो वणा ने देखो वना वेतन वे खेतीबाड़ी रे महीने श्रम करे। आप कहवा कि भारत रे महीने भी पारंपरिक खेती रे महीने लगभग आप देखा 60-80% तक अपनी जितने भी खेतीबाड़ी रे महीने काम करे वे महिला रो बहुत ही योगदान है। और वे 18% अपनी जो महिला बहना है वे काम करे, वे भी वना वेतन काम करे।
1: बिल्कुल वैसा। और शुरुआती और अंतिम चरण की बात करा तो अपनी बहना थ्रेसिंग ले लो, बुआई ले लो, रोपाई निराई और कटाई रे बाद अनाज री सफाई और भंडारण जैसा जो काम है जो कि आपी के मार्ग सब थकाऊ काम आपने के बिना आनी में करे सा।
0: और देखो लागत री बचत वे रही है जटे अपने महिला बहना काम कर रही है। तो आपा देखा कि बाहर ने मजूरी मजदूरा ने लेन अगर आपा काम करावा तो खेती री लागत भी बढ़ जावे। जणू देखो अगर आपा देखा कि महिला बहना काम कर रही है तो श्रम जो है वरना वेतन कर रही है। और अपने पारिवारिक खेती रे महीने देखो एक बहुत बड़ो हाथ जो है अपने बहना वटे रही है, वो खेती री लागत कम वे रही है। तो देखो मुनाफा रे महीने भी बढ़ोतरी वे रही है सा।
1: बिल्कुल वैसा। देखो पशुपालन और डेयरी अर्थव्यवस्था रो भी सफल संचालन अपनी बिना कर रही है। पशुवारी देखभाल में भी जिस तरह हरो चारो काटनो है, लानो है और दूध निकालनो, वटे जटे भी पशु रेवे वंटारी साफ सफाई करनी है, पशुहारे स्वास्थ्य री जानकारी राखनी है और रोजमर्रा जतरा भी छोटा मोटा काम है वी सब अपनी जो बहना है वी बहुत सहज भागीदारियों निभाई रही है
0: और
1: सब।
0: नियमित घरेलू आय री जटे आप बात करा तो फसल तो देखो साल में वैसा 2 या 3 बार ही पयो देवे। लेकिन अगर आप देखा कि डेयरी रे महीने जो वेवा वाली आय है रोजमर्रा री आय है वो घर रो एक बहुत ही बड़ो खर्चो चलावे। अंडे महीने आप देखा कि नकदी प्रवाहों भी आप देखा तो अपनी बहना जो है अप्रत्यक्ष योगदान रे महीने बहुत बड़ो हिस्सो देवे।

0: ऐसा
1: बिल्कुल सा। देखो अंडे ला रहे, अगर खाद्य प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की भी आप बात करा तो जत्रा भी जैविक रूपू अपने खाद तैयार करनी है वहीं में अपने बेनारो अप्रत्यक्ष योगदान रेवेसा, जिस तरह की गोबर गैस संयंत्रों संचालन करना है, केचुआ खाद ने तैयार करना है, पारंपरिक तरीकों जो जैविक कीटनाशक है जिस तरह की नीम और गौमूत्र रो अर्क बनाना है ज़्यादातर महिलाएं करे सा। और यो जो बाजार महंगा रासायनिक उर्वरक है वनाने खरीदवा में खर्च व्यों भी बचावे सा।
0: और बीज संरक्षण री जटे बात करा तो अगली फसल रे वास्ते बीजा ने पारंपरिक और सुरक्षित तरीका ने सहज ने रखनो आपने जो महिला बहना है वेना री विशेषज्ञता री तो देखो होड़ी नहीं है जो आपने बाहरी बीजा पे निर्भरता कम राखी। और देखो जो बीज है पारंपरिक वना ने देखो हमालन राखे और वे बीज आपने जो बहना महिला बहना है वे किसान बहना जो आपने की अगली खेती में काम आए तो देखो केवारो मतलब है कि आपने जो बहना है वना अप्रत्यक्ष योगदान है। और अप्रत्यक्ष योगदान वैसा अगर आप देखा तो आपने जो खेती बाड़ी है देखो वनडे महीने आप देखा तो मुनाफो है वो दो गुणों वे जावे है सा।
1: बिल्कुल सा, योगदान तो योगदान वे और अप्रत्यक्ष योगदान भी अगर आपने अत्रो मुनाफो मिल रहा है तो आप कही सका कि आपने बिना अगर जटे प्रत्यक्ष योगदान भी करे तो यो भी कणियो छुपियो तो को नहीं है सा।
0: हाँ जी बात की
1: और
0: भैसा।
1: देखो भैसा बात आप बिना री कर रहे हाँ तो क्यों नहीं एक मीठो सो राजस्थानी गीत सुनाई दा सा।
0: हाँ सा।

0: तो देखो पूजा वैसा यो तो होने मन भान लास्तानी गीत और अब आपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और देखो सा बात अभी जटे बहनारी कर रहे हाँ तो क्यों नहीं अपनी बहना ने सरकारी तरफ वो घनी हारी योजनाएं हैं जो कि टेम टेम पे अगर आपने ध्यान में वेगा तो आप ही वंडो लाभ ले सकेंगा सा। और आज अभी अपनी बहना ने यही योजना की बात कर रहा हाँ तो क्यों नहीं बतावा सा कि जो मातृत्व वंदना योजना है यह किस तरह काम करे सा।
1: घनी बढ़िया योजना लेने आया हूँ भैसा अपने बहना ने वास्ते। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही तक की अपनी महत्वपूर्ण योजना ने मैनू एक है जंडो मुख्य उद्देश्य जो है अपनी जितनी भी गर्भवती बहना है या पे धात्री बहना है वहाँ ने आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और यह जो योजना है वह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित वेरी है सा।
0: देखो सा अंडे अणि योजना ने अगर उद्देश्य भी आप

0: बात करा तो मजदूरी या नुकसान पूरा करना है, पोषण में सुधार करना है और आर्थिक लाभ भी अगर आप ही बात करा तो पहला बच्चा रे जन्म पे 5,000 रुपया री जो वित्तीय सहायता है वह 2 किस्तों में सीधा अपने जो बहना है वना रे बैंक में ट्रांसफर कर दी जावे सा।
1: पहली किस्त की बात करा तो भैसा 3,000 रुपये अपने जितनी भी गर्भवती बहना है वना ने गर्भावस्था रे पंजीकरण कम कम 1 प्रसव पूर्व जांच रे महीने मिले है और दूसरी किस्त की बात करा तो 2,000 रुपये अपने बच्चा रे जन्म रे पंजीकरण और पहला चक्र रे टीकाकरण व्यवहार बाद महीने मिले है सा।
0: बिल्कुल वैसा। और दूसरा बच्चा रे जन्म पे अगर दूसरो बच्चो यदि लड़की वेवे तो यह जो राशि है वह 1,06,000 रुपया राशि अपने बहना ने दी जावे सा।
1: और पात्रता री जटे बात करा तो मातृत्व वंदन योजना रे महीने जत्री भी गर्भवती बहना है वना ने या पचे धात्री बहना है स्तनपान करवा वाली जत्री भी बहना है वना वे योजना री पात्र वेवे और कौन पात्र नहीं वेवे यो भी बतेता कि जो बहना केंद्र सरकार राज्य सरकार या पचे कणी भी सार्वजनिक क्षेत्र रे उपकरण रे महीने नियमित रूप कार्यरत वेवे वे अणी योजना रो लाभ नहीं ले सके है सा।
0: बिल्कुल वैसा। और अणी में जो दस्तावेज री भी जानकारी अपने बिना ने देवा की अणी में MCP कार्ड यानी माता बाल संरक्षण कार्ड या वो अपने अस्पतालों या आंगनवाड़ियों आपी बनी सका या पछे इन्हें आपी ममता कार्ड भी केवा सा। लारे लारे अपने जो भी बहन है वंडो आधार कार्ड चाहेगा, महिला और वंडे पति दोईरो आधार कार्ड वेणो चावे, महिला जो भी अंडो लाभ लेनी चाह रही है वणी महिला रो बैंक में खातो वेणो चावे। और अगर आप ही आवेदन री बात करा तो आप ही इन्हें ऑफलाइन जाइने जो अपना नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र है या पचे अड़े बड़े जो स्वास्थ्य केंद्र है वटे जाइने आप ही फार्म भरने भी दे सका सा।
1: हाँ जी बात की रो
0: भैया। और वैसा देखो ऑनलाइन री बात करा तो जो सरकारी वेबसाइट है PMMYJ पोर्टल पे जाइने आप ही ऑनलाइन फार्म भी भर सका सा। तो केवारो यो ही मतलब है कि अगर मातृत्व वंदना योजना रो आपने लाभ लेनो है और जो भी आपनी बहना है वे अणी योजना रो ध्यान में राखने लाभ लेगा तो आप ही कही सका कि सरकारी जत्री भी योजना है वड़ा सब रो अपनी बहना लाभ उठावेगा सा।
1: वैसा घनी बढ़िया जानकारी बताई अपनी बेना ने और बढ़िया जानकारी रे लारे देखो बढ़िया सो एक गीत और भेज जावे तो देखो सा जानकारी री महीने और 4 चांद लग जावे सा।
0: बिल्कुल वैसा।
1: तो चलता चलता कार्यक्रम रे महीने बढ़िया सो गीत और हुनावा सा।
0: हाँ सा।

0: इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: तो रेखा भैसा कतरो बढ़िया रील वणी दो घाणो हुणियो और आपणी बेना भी देखो रील वणावा लागी। और अबे देखो आपणी बेना ने देखो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपणे कार्यक्रम रे महीने करावा। हाँ तो आज करावांगे कि गर्भावस्था रे महीने कणी तरीका रो आपणी बेना रो खान पान मेणो जावे है सा।
4: बिल्कुल सा, देखो सा गर्भावस्था रे दौरान एक महिला रो जो शरीर वेवे वो एक नया जीवन रो रूप देरो वे। और अणी टेम अगर सही पोषण और स्वास्थ्य रो ध्यान राखा यो सब अपने बहनारे वास्ते जरूरी वैसा।
3: हाँ जी बात की रहो वैसा। गर्भावस्था रे दौरान जो है जतरी भी पोषण और जतरी जांचा वेवे या भी जानकारी करावा कि खान पान री जटे आप बात करा तो अपनी बेना ने आयरन वेगियो फोलिक एसिड वेगी खून री कमी रे बचाव आप देखा तो हरी पत्तेदार सब्जियां रो सेवन करनो चावे। चना वेगियो, अनार वेगियो, चुकंदर वेगियो, अंडो अपनी बेना जो है अणी अंडी मात्रा ज़्यादा ज़्यादा लेनी जावे। जणू कहिए कि आपणी बेनारे महीने हिमोग्लोबिन रो स्तर है वो जो है वण्यो तो को रेवे है सा।
4: बिल्कुल सा, कैल्शियम रे वास्ते अपनी बेना दूध दही छाछ पनीर रागी रो उपयोग भी कर सके। बात करा प्रोटीन री तो जतरी भी दाला है, काला चना है, मूंगफली, सोयाबीन, दूध और दूध बनिया तका जो उत्पाद है वड़ा सबरो भी सेवन अपनी बेना कर सके सा।
3: स्वास्थ्य जांच की बात करा तो वैसा जरूरी टीका जतरा भी आप देखा कि दो टीका जो अपनी बेना ने लागे है दो वे लगाना बहुत ही जरूरी है और समय समय पे टीका लगवाना चाहे। और जो भी जानकारी है नज़दीकी अगर आपने बेना है ना आंगनबाड़ी केंद्र या बच्चे आशा बेनू जे संपर्क कर सके। और ममता कार्ड अपनी बेना ने बनवाना बहुत ही जरूरी है, वे अगर वेती कोशिश ममता कार्ड बनाएगा तो वणा ने जो सरकारी तरफ जो सहायता है वह पूरी तरीकों वणा ने मिलेगा सा।
4: बिल्कुल सा, और अंडे साथ साथ में अगर आपने स्वयं रो ध्यान भी आपने रखनो है रोजमर्रा जतरा भी काम है विने आपने करनो है लेकिन ध्यान यो राखनो है कि भारी वजन रो सामान आपने नहीं उठानो है। थोड़ो आपने दोपहर के समय आराम भी करनो है, लगातार खड़ा नहीं रहनो और शारीरिक अपनी मजबूती के आधार पे जो भी काम कर रहे हाँ वो आपने अवश्य करनो है सा।
3: हाँ सा, और टेम टेम पे देखो भैसा अपने चिकित्सक की सहायता हूँ अपने देखो कि घणो हारो बदलाव वेवे अपनी जितनी भी गर्भवती बहना है वणा महीने और गर्भावस्था रे दौरान तो वणा ने कई के खाणो पीणो चावे कई दवाया सेवन करनो चावे तो वणा ने चिकित्सक की सलाह टेम टेम वणा ने जांचा करवा तो रहनो चावे। और केवारो मतलब है कि वणा ने पूरी तरीकों वणा ने स्वास्थ्य रो ध्यान वणा ने खुद राखनो चावे सा।
4: बिल्कुल भैसा, और आपने आनी जानकारी देवा बाद तो अपनी सगली बहना ध्यान रखेगा, स्वयं रो भी रखेगा, अपने परिवार रो भी रखेगा और जटे मन खुश रहेगा तो अपने परिवार भी खुश रहेगा। तो क्यों नहीं अपने चलता चलता अपनी बेना ने एक राजस्थानी गीत और होना ही दसा।
3: हाँ सा।

अभी हमारी बहनें और सखियां सुन रही थी उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियों की बाड़ी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम।

0: सत्यमेव जयते इस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी हमने सुना, आवाज़ थी बप्पी लहरी की। आइए सुनते हैं अगला नगमा, उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में खुद गर्ज फिल्म का गीत अभी हमने सुना। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है विरासत। आवाज है कुमार शानू और के एस चित्रा की। उससे पहले ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में विवाह फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण।

एक पेड़ माँ के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवन का मूल आधार है और इस पहल के माध्यम से हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम का हिस्सा बने और अपनी माँ के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बनाने के लिए एक पेड़ हम अपने हाथों से अवश्य लगाएं।

एक पेड़ माँ के नाम एक विशेष देशव्यापी पेड़ लगाने की अभियान है जो 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत लोगों को अपनी माँ के प्रति प्यार, सम्मान और आदर के चिन्ह के रूप में तथा पेड़ों और धरती माँ की सुरक्षा की शपथ लेने के लिए एक पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान का मकसद भूक्षरण को रोकना और भूमि के टूटे और खराब हिस्सों को भी पुनर्स्थापित करना है, साथ ही साथ हरियाली को बढ़ाना है।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान भारत की स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण के आह्वान और माताओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ यह पहल नागरिकों को एक हरित ग्रह बनाने में अपना योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। इस अभियान की सफलता पूरे देश में लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की भावना में निहित है और यह अभियान न सिर्फ प्रकृति और मातृत्व की पोषण शक्ति के सम्मान का प्रतीक है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ विश्व का आश्वासन भी है।

0: अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनिएगा थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे, ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली के

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है।

0: झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: राम राम धरना बैसा राम राम
1: राम राम पूजा बैसा राम राम
0: कृषि जगत हुणवा वाला हंगला किसान भाई बहना ने अपन
1: राम राम, राम सा
0: देखो बैसा कार्यक्रम रो टेम भी ना अपन हंगला किसान भाई बहन जो है रेडो सेटरडे बड़े ये है और वे वाट नाल रहे कि भाई कृषि जगत कार्यक्रम रे महीने देखो आप भांत भांत री जानकारी तो लावा हां तो आज सब पहला कई जानकारी लाया हो आप
1: तो देखो पूजा भाई सा आज किसान विवाद में आपने किसान भाई बना के वास्ते जानकारी लाया हाँ कि ई मित्र और विभिन्न जो खेती बाड़ी जो योजना है वना वास्ते आज जानकारी लाया हाँ क्योंकि देखो राजस्थान में ई मित्र और विभिन्न जो खेती बाड़ी री जो विभिन्न योजनाएं हैं वे ग्रामीण और कृषि विकास री रीढ़ बन चुकी है। ये सब बात आप ही जाना हाँ अंडे अलावा देखो किसान रे आप ही अगर बात करा खेती बाड़ी में वो काम करें तो बटे ही बहुत सारा ऐसी योजना है जो किसान ने आर्थिक संबल और आधुनिक तकनीकों जोड़ रखे। तो आपने किसान भाई ने बतावा कि ई मित्र जो है राजस्थान सरकार एक महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो गांव और शहरा में देखो अंडे माध्यम यो काम करे है। तो अपने किसान भाई लिए केवल एक सेवा नहीं है बल्कि सरकारी योजना रो प्रवेश द्वार है सा
0: वैसे हांची बात कह रहा और जटे ई मित्र री बात कर रहे हाँ तो अपने किसान भाई बहना ने एक ही छत्र नीचे आप देखा नरी हरी जो है सेवा मिल जावे है। किसान ने अब सरकारी दफ्तर रा चक्कर नहीं काटना पड़े वे ई मित्र पे जाइन अपने देखो गिरदावरी रा नकल है जमाबंदी वे गया है भूमि रो रिकॉर्ड वे गयो है जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र आपा केवा तो आधार कार्ड पेन कार्ड यानी केवा रो मतलब एक जसा भी सरकारी दस्तावेज है वे आपने जो किसान भाई बहन आसानी ई मित्र माध्यम जो है वणाई सके है और वटू प्राप्त कर सके है सा
1: बिल्कुल हांची बात की वैसा और अंडे माध्यम देखो आपने जो योजना है वन में ऑनलाइन जो है आपने किसान भाई आवेदन भी कर सके। कृषि विभाग री लगभग सभी योजना रो लाभ लेवा रे लिए ऑनलाइन आवेदन ई मित्र माध्यम अपने किसान भाई कर सके। वनडे माध्यम देखो असी यह है कि वनडे मायने जो प्रक्रिया है वनडे मायने बिचौलिया जो भी वेवे वनडे मायने आना जो भूमिका वेवे वह समाप्त वे जावे और जो फायदो है वो अपने किसान भाई ने सीधो मिले ऐसा।
0: हाँ जी बात कह रहे हो ऐसा और झटे आप बात कर रहे ई मित्र की भूमिका तो आप बतावा की कृषि जत्री भी योजना है खेती बाड़ी की योजना है जो अपने किसान भाई बहना वास्ते काफी फायदेमंद है वे ई मित्र पे जैन कणी

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: तो देखो पूजा भाई साहब, प्यारो सो गीत हुणियो, लारे लारे हुणियो आपी संदेश, और अबे देखो पाचा कार्यक्रम में आया हाँ। आपने किसान भाई ने जानकारी अबे करावा के मानसून रे दौरान पशु आवाज प्रबंधन रे लिए। तो अभी बात कर रहा, देखो मानसून रो टेम भी आई गयो है और वर्खा छाटा जो टेम है वह भी आएगी है। तो मानसून रो मौसम आता ही पशु वाले स्वास्थ्य और बनारे रेवार स्थान पे विशेष ध्यान देवारी आवश्यकता वेवे। तो आपने किसान बहन अणी और विशेष ध्यान देना चाहे, और अणी मौसम में हवा में अधिक नमी रहे तो वंडे कारण कही है कि जल जमाव रे कारण

0: कीचड़ बढ़ जावे, जड़ में आपने ढांडा चोपारे थनेला और खुरपका मुंह पका रोग जने के FMD कहवे, जैसा संक्रमण रो खतरो जो है वो काफ़ी बढ़ जावे। पशु आवास में सूखो और स्वच्छ राखनो है ताकि वनारे स्वास्थ्य के लिए सब महत्वपूर्ण है। तो आप ही जानकारी यह कराई रहा कि यानी मौसम में आपने ढांडा चोपाए देखभाल आप ही किसरे करा सा।
1: घनी बढ़िया जानकारी लाया हो धरना बैसा और बतावा कि देखो आनी मौसम रे टाइम रे महीने अपने किसान भाई बहन ने जटे भी वे रेवे अपने वाड़ो वगैरह वनारे आवासीस जो साफ सफाई और जल निकासी रो अपने ध्यान रखनो है। अपने जटे भी डांडा चोपा बंधी रिया है वणी फर्श ने अपने हुक्को राखनो है, नमी बिल्कुल नहीं वणाई राखनी है और जल निकासी जो व्यवस्था है वह बिल्कुल पूरी तरीके सही वणी जावे जिससे कि वनारे जो जल जमाव है वो वणी जगह नीवे वह सा।
0: बिल्कुल सा लाल लाल वेंटिलेशन और कीट नियंत्रण रो भी अपने किसान ने ध्यान रखना चाहे कि अणि मौसम में अणि हिस्सा में आपी हवा में सही प्रभाव वे और मानसून ने बढ़ता तका जो भी मक्खी मच्छर वे कीचड़ वे पशुओं वछावारों अपन तरीको ढूंढना चाहे सा। तो आप यो भी बात कर रहे हैं कि जो आपी जो आहार दा अपने पशुआ ने वो भी अच्छो स्वच्छ बनो चाहे और जो बिछावन रो है जैसे कि फर्श पे नमी और फिसलन वे वणु बचावा लिए अपने पुआल या सूखी घास रो उपयोग अपने किसान भाई ने करनो चाहे सा।
1: और धूप और हवारी जो उचित व्यवस्था वेणी चाहे लीकेज जांच वेणी चाहे मानसून शुरू व्यवहार पहली अखबार रे टेम अपने धारणा बैसा जत्री भी शेड री छत अपने ढांडा चोपा जटे बंध्या लगाए वटारी जो छत है वह अपने ठीक कर लेनी है किसान भाई बहना ने ताकि जो पानी टपक वाली जो समस्या है वानी वेवे और जो शेड है वो हवादार वेणो चाहे खिड़कियों दरवाजा जो है ऐसा वेणा चाहे जटे की वर्कारो पानी नहीं आवे है और आपने देखा तो दरवाजा और मोटा पे मोटा बोरा या टाट या पचासी तरपाल लटके देवा जणू के एक वर्कारो जो पानी है ढांडा चोपा बनते रहे वटे नहीं आवे सा।
0: बिल्कुल सा और स्वच्छ और कीट नियंत्रण रो भी और नियमित सफाई रो भी अपने किसान भाई बहनों ने ध्यान रखनो चाहे। बिल्कुल अणि मानसून रे दौरान पशुआ रे मलमूत्र और गोबर री अपने नियमित सफाई करनी चाहिए और जटे वे डांडा चोपा बंदे लगाए वही जगह पे विशेष कर अपने फिनाइल रा पोचा और चूना रा अपने छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर जो है वणु बचाव वही सके सा।
1: हाँ सा और नमी और गर्मी के कारण देखो कतरी बार देखा कि मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा पन पे है तो अंडे बचावों अपने किसान भाई बहना ने नीम रा पत्ता या पचे कंडा या उपला जो है वना ने अपने थोड़ी थोड़ी देर धुआं करते रहना चाहे जणू के कि मक्खी मच्छर है वे वटे नीपन पे है सा।
0: बिल्कुल सा और लारे देखो आहार और पेयजल प्रबंधन भी आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहे फफूंद रहित चारो जो है वो आपने ढांडा चोपा ने देना चाहे और हमेशा ताज़ा स्वच्छ जो है पानी आपने ढांडा चोपा ने देना चाहे। साफ पानी अगर आपने पशु पिएगा दो ही टाइम आपने पिलाना है अणि तरीके से आपने ध्यान रखेंगे आप ही ढांडा चोपा रो तो देखो अणि मानसून रे दौरान आपने ढांडा चोपा स्वस्थ रहेगा सा।
1: और स्वास्थ्य और टीकाकरण रो भी किसान भाई बहना ने ध्यान रखना है। वर्का रे मौसम रे महीने खुर पक्का और मुँह पक्का या पे गलघोंटू जैसी बीमारियों रो खतरो ज़्यादा बढ़ जावे तो आपने किसान भाई बहना ने यो ध्यान रखना है कि नज़दीकी पशु चिकित्सक को संपर्क करी मानसून रे पहली टीकाकरण अवश्य करवाई लेनो चाहे जणू कहीं कि वणाने जो बीमारियां है बरसाती वे बीमारियां नीवे वह सा।
0: बिल्कुल सा और लारे जटे ढांडा चोपा बंधे लगा है वटे कीटनाशकों छिड़काव करना चाहे मानसून रे दौरान वेवा वाला जो भी पशुआ में पेट संबंधी जो भी कीड़ा वेवे तो वणी देखो कीटनाशक दवाओं वे मर जावे तो अणि सब चीजारो जो है वे अपने किसान भाई ध्यान रखेगा तो मानसून रे दौरान जो है वे अपन ढांडा चोपा स्वस्थ रहेगा बीमारी वणा ने नहीं लगेगा सा।
1: और भैसा देखो ढांडा चोपा स्वस्थ रहेगा तो देखो किसान भाई बहना जितना भी अपने खेती बाड़ी है तो वणा रे जो दुधारू अपने दूध आवे और बढ़िया अपने हव आवन वेगा किसान भाई बहनारी और आवन वेगा तो देखो किसान भाई बहनारी खुशी खुशी आएगा सा। और खुशियारे महीने चार चांद लगावा राजस्थानी गीत रे लारे।
0: बिल्कुल सा।

0: तो धारणा में ऐसा कतरो बढ़िया गीत हुणवायो किसान भाई बहना ने। और देखो अबे जानकारी करावा कि पौधा ने रोग बचावे वास्ते जो जैविक गोल है वो कणी तरीको वणानो जावे सा।
1: हाँ सर।
0: 200 लीटर पानी लेनो है, 10 किलो नीमरी पत्तिया मिलानी है, 10 किलो आपने आकरा पत्ता डालना है, आधा किलो बेसन मिलानो है, 3 किलो गुड़ मिला

0: है, 50 लीटर आपने छाश डालनी है और मिश्रण ने जो है 45-50 दिन तक ढकी रखना है, पचे आपने ये घोल तैयार है सा।
1: बिल्कुल सा, यह तो आप घोल बतायो। और देखो अंडे लारे लारे आपने किसान भाई ने यू भी बतावा कि जो खेती बाड़ी में उर्वरक जो इस्तेमाल करे वनारो संतुलित प्रयोग जो है भाई किसे करे, तो अंडे मैंने सब वो पहली आपने किसान भाई ने ध्यान रखना है कि शुरुआत में मिट्टी परीक्षण करनी है। वन में देखो हर खेत री मिट्टी अलग वेवे, तो बिना जांच रे आपने उर्वरक रो नहीं डालना है, पैसा भी लगाना है और आपने लाभ भी अपने किसान भाई ने मिले। तो अणु आपने किसान भाई ने कई कई लाभ मिले तो बतावा कि देखो अंडर जो मिट्टी रो परीक्षण है वन में पीएच मान, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और सल्फर है, ये अणा सबरी जांच मिलेगा सा।
0: हाँ सा, और जटे आप उर्वरक की बात करें भैसा, तो देखो जो भी आप देखा कि सही और संतुलित पोषण जो वे वणा ने देनो है, तो अंडे वास्ते आपने पत्तियाँ हरी और जड़ मजबूत करवा वास्ते यूरिया है, और रोग और कीटारो प्रकोप अगर अधिक वे जावे तो आपने यूरिया रो छिड़काव करता रहनो चाहे है सा। और पोषक तत्व की बात करा तो सूक्ष्म पोषक तत्व रे वास्ते जिंक वे गयो, बोरोन वे गयो, आयरन वे गयो। अंडे वास्ते जिंक जो है अपने पत्तियां ने बढ़ावे है, बोरोन रहे वे अपने फूल झड़वा रे वास्ते फूलन ने कम करे है, आयरन जो है वणारी कमी अपन पत्तियां पीली पड़ जावे, सल्फर की कमी अपन प्रोटीन रे उत्पादन रे वास्ते कम वे वे सा।
1: बिल्कुल सा, सही समय पर और सही विधियों अगर आपने किसान भाई वणारो उपयोग करेगा, तो जैसे कि नाइट्रोजन री विभाजित री अगर बात करा तो एक तिहाई बुआई रे समय, एक तिहाई बढ़वा रहे समय 30-35 दिन रे अंतराल पे, और एक तिहाई बालियां निकलवाऊं पहली। और आपने फास्फोरस रो सही उपयोग करनो है ताकि फास्फोरस उर्वरक रो जड़ा में जाइने लारे देनो है, ताकि पूरा खेत में फैलावा रो कड़ी फसल में आपने नुकसान नहीं हुए आपने किसान भाई ने। लारे लारे आपने एकीकृत पोषण प्रबंधन रो भी ध्यान रखना है, जन में रासायनिक जैविक और मिट्टी री सेहत स्थाई उत्पादन ये सब आपने लारे मिले, तो आपने मिट्टी री कार्बनिक पदार्थ ने बढ़ानो है, मिट्टी री संरचना, पानी धारण क्षमता और सूक्ष्म जीव सक्रियता ने बढ़ानो है, ताकि अपने किसान भाई ने देखो लाभ मिले सा।
0: और देखो सा अपने किसान भाई बहना ने बतावा कि देखो सा अपने जो उर्वरक की मात्रा है वह अपने देखो मृदा परीक्षण कर पचे उर्वरक डालनो चाहे है, केवल यूरिया पे निर्भर नहीं रहनो है, फॉस्फोरस और पोटाश भी अपने अनदेखी नहीं करनी है, एक ही बार में पूरा नाइट्रोजन डाल देनो है, जरूरत ज़्यादा जो है वह अपने उर्वरक नहीं डालना है, यानी केवल मतलब एक छोटी छोटी बातों को किसान भाई बहना ने ध्यान रखनो चाहे है सा।
1: बिल्कुल सा, या तो आप ही जानकारी दीदी सामान्य खेती बाड़ी दी। और अब देखो पूजा भाई सा चलता चलता कार्यक्रम में एक प्यारो सो गीत और होना सा।
0: हाँ सा।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र और सुनते हैं हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में।
1: समाचार के साथ मैं लवली निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदाय को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा

0: आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना, संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3:05 हुए हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में शाम 5 सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए। ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर। यहां 66 पर 4 और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: This one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
0: Sutherland ki is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे। स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125। और अगर आप वेस्टइंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड पैन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज पैन की दिशा में या बल्ले के बीचों बीच कर, इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर। डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। 71 पर 4, रन रेट 5.26। ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है।
3: भाभी, मतलब भाभी,
4: हाँ।
3: वो आपकी बहन है ना,
4: हाँ।
3: उससे मिलना चाहता हूँ।
4: क्यों, टेली चैंपियन हो गया है इसलिए?
3: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
4: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
3: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
4: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
3: वो मेरा नाम जानती है?
4: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
3: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
4: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा भी?
3: जरूर कहूंगा।
4: तो कहना।
3: कहूं? कह तू भाभी। भाभी, असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
4: हाँ?
3: शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया।
4: हाँ, कह दिया भाभी, कह दिया। अब जब वो अपने राजा के गुनगाया करती है।
3: राजा के? कहाँ के राजा के?
4: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्जशील चाचा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
3: भाभी, ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी, वो तो देवी है, देवी। कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
4: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
3: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
4: मैं क्या जा, टेनिस मैच देख के लौटी।
3: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी हैं। एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी, एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
4: अच्छा सुन दीपक, सुन, मुझे ख्याल आया।
3: क्या?
4: मैं शील को बुलाती हूँ और सुन, उसे शेर शायरी का

0: बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने लगा।
1: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है। देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी, ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी, शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
0: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख, मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
1: अच्छा,
0: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर कर। वो आ रही है, छुपे जा।
1: तू छुप जा भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली को।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कह।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत खास देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता, कभी मेरी तमन्ना भी सजकर।

0: होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आह क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा?
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल पर ये वक्त है प्रोग्राम मधुरिमा का।

प्रोग्राम मधुरिमा में हम बात करते हैं किसी एक राग की, और आज जिस राग की हम बात कर रहे हैं वो राग है राग दीपक। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी रागों में से एक है राग दीपक, जिसे संगीत के जनक भगवान शिव के मुख से उत्पन्न माना जाता है। यह राग मूलतः अग्नि और ऊष्मा से जुड़ा है और इसके गायन का प्रभाव इतना तीव्र माना जाता है कि बिना दियों के भी ये वातावरण में आग और गर्मी उत्पन्न कर सकता है।

कार्यक्रम मधुरिमा में बात राग दीपक की। और इतिहास में कहते हैं सम्राट तानसेन, क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न के थे, उन्होंने दीपक राग से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है। एक बार दरबार के ईर्ष्यालु गायकों ने साजिश के तहत तानसेन से दीपक राग गवाया। ये राग रात में गाया गया। जैसे ही तानसेन ने राग गाना शुरू किया, वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा और आग की लपटें उठने लगी। तानसेन का शरीर इस तेज से झुलसने लगा। अपनी जान बचाने के लिए तानसेन ने अपनी बेटियों से मेघ मल्हार गवाया और मेघ मल्हार के प्रभाव से बारिश हुई और तानसेन के शरीर की जलन शांत हुई। तो राग दीपक से जुड़ी हुई ये एक विदंती है जिसे आपने अभी सुना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। बात हो रही है राग दीपक की। राग दीपक की उत्पत्ति शास्त्रीय शास्त्र के अनुसार देवलोक में मानी जाती है। इसके गायन का जो प्रहर है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है और राग दीपक के पांच अलग अलग प्रकार माने जाते हैं जो पूर्वी बिलावल, कल्याण, काफी और खमाज से संबंधित हैं। ये राग आज के समय में लगभग विलुप्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानसेन के बाद इसे सही तरीके से गाने का साहस किसी ने नहीं किया, क्योंकि जरा सी चूक से भारी अनिष्ट होने की आशा रहती है।

कार्यक्रम मधुरिमा में राग दीपक से जुड़ी हुई जानकारी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अमरपाली के इस गीत के साथ ही मधुरिमा प्रोग्राम को यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 में कई भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से शुरू। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान हरमनप्रीत को सौंपी। और रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट क्रोएशिया के जागरेब में कल से शुरू। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मोरक्को ने मोंटेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। 1-1 से बराबरी के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की। 72वें मिनट में कोडी गैपको ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई। क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ बैलेंस टचबैक ने गैपको को गोल करने में मदद की। गैपको अब विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 6 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने कुल 7 गोल किए थे। मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की। सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में स्थानापन्न जेम्स डाइन टेल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया। मोंटेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया। पेनल्टी किक के दौरान दोनों देशों ने अपनी पहली 2 कोशिशों में से 1 में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए। यासीन बोनू ने क्राइसेंसियो समरविले का शॉट बचाया और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल करी। यासीन बोनू ने शूटआउट में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में पैराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पराजित किया। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर यह कारनामा किया। बोस्टन स्टेडियम में खेला गया मुकाबला निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फीफा विश्व कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था। इस बार भी टीम ने आखिरी तक संघर्ष किया। अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नोयर ने शानदार बचाव कर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन आखिरकार पराग्वे ने अपने तीसरे निर्णायक मौके का फायदा उठाकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के 42वें मिनट में जूलियो एनसेसो ने गोल करके पराग्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में फ्लोरियन विटर्स के क्रॉस पर काई हेवटर्स ने हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जोनाथन टाह ने भी हेडर से गोल किया, लेकिन उसे अमान्य करार दे दिया गया। तय समय तक कोई और गोल नहीं हुआ, इसलिए मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। शूटआउट की शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन कोई हेवर्ट्स की पहली पेनल्टी पर पराग्वे के गोलकीपर के हाथों बचाव किया गया। इसके बाद मॉरिसियो ने गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि जोशुआ किमिख ने अगली पेनल्टी पर गोल करके जर्मनी की वापसी कराई। इसके बाद गुस्तावो गोमेज ने गोल कर पराग्वे को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन जमाल मुसियाला ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। रोमांच तब और बढ़ गया जब मटियास गोलार्जा ने गोल करके पराग्वे को जीत के करीब पहुंचा दिया, जबकि जर्मनी के लिए निक वोल्टमेट का अगला प्रयास रोक दिया गया।
2: Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history. Germany are leaving a World Cup.
1: उधर 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने भी जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद कासेमिरो और गैब्रियल मार्टिनेली के गोलों की बदौलत ब्राजील ने आखिरी मिनटों में यादगार जीत दर्ज की।
3: Belongs to Brazil. Brazil march on to the round of 16.
1: Vishesh Shukla, Sportscan.
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और हर मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में इस वक्त एलिना रिबाकिना का मुकाबला लोइस बॉयसन से जारी है। वहीं पुरुष सिंगल्स में जे मेंसिक और टी सैमुअल के बीच मुकाबला

0: खेला जा रहा है। वहीं कल यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: पुरुष सिंगल्स के पहले चरण में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 3.5 घंटे तक चले मुकाबले में मियोमिर कैकमेनोविच को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 से हराया। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में सिनर ने कई गलतियों के बावजूद मुकाबला अपने नाम किया। कैकमेनोविच ने तीसरे सेट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अहम पॉइंट्स हासिल किए। अनफोर्स्ड एरर को कम करके निर्णायक सेट तक पहुंचने के बाद सिनर ने मैच पर पकड़ बनाई और जीत हासिल की। दूसरे राउंड में सिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस से होगा। सिनर ने इस जीत के साथ ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में 94 मैच जीत लिए हैं। उन्होंने इटली के खिलाड़ियों में निकोला पियत्रांगेली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं 3 घंटे और 11 मिनट तक चले एक और रोमांचक मुकाबले में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपने 21वें विंबलडन अभियान की शुरुआत चीन के येबुंग वू को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हरा कर की। पहले सेट में दुनिया के 102वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ने 15 विनर्स लगाए, हालांकि उतनी ही संख्या में अनफोर्स्ड गलतियां भी की। इस साल केवल 5 टूर्नामेंट खेलने वाले जोकोविच ने तीसरे सेट के अंत में पूरी ताकत झोंक कर वू की सर्विस ब्रेक की। जोकोविच ने संघर्ष करते हुए तीसरा सेट अपने नाम किया और फिर चौथे सेट में अहम मौकों पर पूरी तरह नियंत्रण बनाकर विंबलडन के पहले दौर में अपना रिकॉर्ड 21-0 कर लिया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कर लेते हैं कुश्ती एशियन चैंपियनशिप पर। थाईलैंड के पटाया में एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 के अलग अलग वर्ग में नीरज पटेल, आर्यन मलिक, विकास और दिशांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 15 फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही। भारतीय लड़कों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 52 किलो में प्रथमेश सूर्यकांत पाटिल, 62 किलो में नैतिक, 75 किलो में हर्षद केशव और 85 किलो में विवेक चौहान ने स्वर्ण पदक जीते। नीतीश ने 57 किलो में एकमात्र रजत पदक अपने नाम किया। 41 किलो में गौतम, 44 किलो में अहलावत वंश और 68 किलो में अरमान ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं ग्रीको रोमन में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। 62 किलो में दर्पण राजू चौधरी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो में यश, 75 किलो में गौरव पाटिल, 85 किलो में जतिन ने रजत हासिल किए। एकमात्र कांस्य पदक 57 किलो में धौनचक ने जीता। प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला कुश्ती टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दूसरा स्थान हासिल किया। 33 किलो में समृद्धि पाटिल, 46 किलो में विनाक्षी और 66 किलो में दिशा ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या रानी ने 36 किलो में और ध्यानेश्वरी ने 42 किलो में रजत पदक जीता। निशा ने 54 किलो, दीपांशी ने 58 किलो, अंजलि ने 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल चेस्टर ले स्ट्रीट में खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड से मिली हार के बाद नई शुरुआत की तलाश करेगी। वहीं इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर दावेदारी पेश करना चाहेगा। इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बीच एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई ने आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
3: एशियाई खेलों 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया उतरेगी। भारत ने इससे पहले चीन के होंगजाऊ में हुए एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। टीम की बात करें तो उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को मजबूती देंगी। विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष और कामलिनी को टीम में जगह नहीं मिली है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्विंग स्पेशलिस्ट रेणुका सिंह ठाकुर और अनुभवी अरुंधति रेड्डी के कंधे पर होगी। राधा यादव और श्रेयंका पाटिल स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को छकाएंगे। श्रेयंका चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हो गई थी। यस्तिका भाटिया जो विश्व कप टीम का हिस्सा थी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। अमीषा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं आईसीसी ने महिला टी20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चरणी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष

0: पर बरकरार है। वहीं बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाए रखी है। और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज बेल्जियम के आगामी एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर 5 से 18 जुलाई के बीच खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस एक्सपोजर हॉकी टूर के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ 2-2 मैच, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। इस एक्सपोजर टूर से टीम को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपने कॉम्बिनेशन और खेलने के तरीके को परखने में मदद मिलेगी। इस टूर के लिए डिफेंडर अनमोल इक्का को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। गोलकीपिंग यूनिट में विवेक लाकरा और कुणाल तेवतिया शामिल है। डिफेंस लाइन में कप्तान अनमोल इक्का, रोहित कुल्लू, चिराग रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी मणिमारन शामिल हैं। मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित इक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोपो, मन्नू मलिक और ऋतिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, रवदीप सिंह, अर्जुन हरगुड़े, आर्यन जेस, लवनूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया के जागरेब में कल से रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है, जो शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत इस साल की ये तीसरी प्रतियोगिता होगी और इसके बाद 3 और प्रतियोगिताएं होनी है। इस प्रतियोगिता में रैपिड शतरंज के 9 दौर जबकि ब्लिट शतरंज के 18 दौर खेले जाएंगे। रैपिड में हर जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि ब्लिट्स में जीत के लिए 1 अंक और ड्रॉ के लिए आधा अंक दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान के नोदरबेक अब्दुल सत्तरोव, सर्बिया के इवान सारिक और रोमानिया के डीएक बोगदान डैनियल भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन पर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आज अगले 2 विश्व के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट फरवरी 2027 और जनवरी 2028 में खेला जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त 2027 के बीच लखनऊ में होगा। वहीं 2028 में 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध

0: उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता

0: की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार

0: सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta.

0: Manten.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है। और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए।

0: इसके अलावा असमानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है। यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो, उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए। यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए। हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए। सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सके। सबसे बड़ी जरूरत थी इस देश में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है। यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है। और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है। और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन पैमानों को रखा जाता है, और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
0: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं, ये 100% कवरेज होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है। और ये 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा। सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह ये है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। अब सोचिए, इस देश में 2/3 आबादी को, यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है। यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है। जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918, और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी, वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी, वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी

0: दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
1: देखिए, बेरोजगारी का घटना, इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था ईपीएफ में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गई या इम्प्लॉयमेंट मिल गया। इम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका पीएफ कटता होगा, यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, पीएफ कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका पीएफ कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना पीएफ कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं या आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप पीएफ कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका पीएफ कटने लगा, तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी। और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
0: बिल्कुल,
1: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई पीएफ तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेके कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और खेतिहर लोगों के, खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
0: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने में रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
1: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना, हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर, वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में, जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती, आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ये ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दहन की, जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
0: बिल्कुल, तो कई और संकेतक

0: हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
1: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरे दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
0: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
1: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है, हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं, कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था, कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को

0: 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य

0: वेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शीर्ष 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे से 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Sevatirth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of the people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBGRAMJI Act 2025, will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBGRAMJI Act 2025, Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building.

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की। और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा, जबकि आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से टेक्सास में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमरीका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत

0: की योजना नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। यह फैसला दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी प्रमुख नीतिगत पहल को रोका है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीतियों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अमान्य घोषित किया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी दान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में अफगानिस्तान में 10 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इनमें 800 से अधिक अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की मीडिया एजेंसी के अनुसार ये हमले खोस्त, पक्तिया, पक्तिका, कुनार, काबुल, नंगरहार और कंधार सहित कई प्रांतों पर किए गए। इन हमलों में आवासीय मकान, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय सहित नागरिक अवसंरचनाओं को भी निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में
4: संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 लोग घायल हुए। अफगान मिशन ने कहा कि ये हमले अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर नजर रखने और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से तुरंत संघर्ष रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। यूरोपीय संघ ने भी संयम बरतने और तनाव कम करने का आग्रह किया। उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर हाल में पालन होना चाहिए। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश की

0: ड्रोन युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रक्षा योजना की शुरुआत की है। श्री स्टार्मर ने बताया कि ये रक्षा निवेश योजना अगले चार वर्षों में 298 अरब पाउंड की होगी। इसमें 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त धनराशि भी शामिल है। श्री स्टार्मर ने कहा कि ये योजना सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता बहाल रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश गैर कानूनी घोषित किए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उभरते खतरों से निपटने के लिए 298 अरब पाउंड की रक्षा निवेश योजना प्रस्तुत की और फीफा विश्व कप में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से न्यूयॉर्क में होगा जबकि आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से टेक्सस में होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Kiran Jha with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi hold telephonic conversation with Iranian President Masoud Pezeshkian, reiterates the need for continued efforts to ensure lasting peace in the region. U.S. Supreme Court upholds birthright citizenship, rules President Trump's execution, executive order unlawful. Afghanistan accuses Pakistan of violating its territorial integrity, urges the UN and international community to closely monitor the situation. Britain unveils £298 billion defence investment plan to counter evolving threats. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the case of Trump's B. Barbara, the court ruled 6-3 that the executive order is unlawful and concluded that the order violates the 14th Amendment to the U.S. Constitution. President Donald Trump signed the executive order on his first day back in the office as part of a broader immigration crackdown. The order sought to deny automatic U.S. citizenship to children born in the United States to parents who were either in the country illegally or present on temporary visas. Afghanistan's permanent

हम भी आप लोगों के प्यार को बिल्कुल सलाम करते हैं। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम कुल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आप ही की दोस्त रितिका। तो दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत गाया अलका याग्निक ने, और फिल्म जो कि 1993 में गुमराह फिल्म, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

भाई प्यार तो जितना मिले उतना ही कम है, आप भी मानते हैं ना, तो आप भी हमें यूं ही इतना प्यार देते रहिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी जो गीत आपने सुना, सलमान खान और रेवती पर फिल्माया ये गीत, इस गीत को आवाज दी चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, और ये फिल्म 1991 में आई लव। आनंद मिलिंद का संगीत और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: इस अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं तक। अब आप जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम

0: प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजना

0: मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
3: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद द इरानियन प्रेसिडेंट डॉ मसूद पेजेश्कियान। ड्यूरिंग द टॉक्स प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ब्रीफ्ड मिस्टर मोदी ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया एंड द वे फॉरवर्ड। The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44 kilometer miles.